मुनि सनिधे सेवा सुखमा निज मुग बलगु मनसा निधि चाल सुखमा रामुनि सनिधि सेवा सुखमा श्री रामा।